सच आख्या सी जदों याद करेगा मैं आवांगा आ वेखना घर दी की हालत हो गई मां ने रो रो के अखां गवा दित्तियां तेरे प्यार दी गुरु नानक पातशाह आए आवाज दित्ती मां माता त्रिपता ने पछाण लिया ए तां मेरे लाल दी आवाज है ए तां मेरे नानक दी आवाज है भज के आई अखां ना होण करके ठोकर खा गुरु नानक पातशाह ने अगां होके मां दे गल ना लगे माता त्रिपता ने आख्या बेटा मैं तेरे स्पर्श तां कर रही हां लेकिन दर्शन नहीं कर सकती क्योंकि रो रो के तेरे याद विच मैं अखां गवा बैठी हजूर कहन लगे ए केड़ी वड्डी गल है मां एक बारी अखां बंद करके खोल दे अखां बंद करके खोलिया तां की वेख्या चौदवी दा चंद्रमा चढ़िया सामने गुरु नानक पातशाह खड़े आख्या बेटा पिता नूं मिले के कोई नहीं ओ तां जिस वेले रोटी खाउंदे ने यही कहंदे हन कि इस हथ दे नाल मैं गुरु नानक दे मुंह ते चपेड़ मार तां हथ विचों बुरकी डिग पैंदी है मर्यादा पुरशोत्तम गुरु नानक सच्चे पातशाह आए मैं तां कालू पिता दे चरणां नूं हथ लाया चरण स्पर्श कीते पिता कालू ने गल ना ला लिया बेटा मेरे तो पहले ही राय बुलार नू मिल जेड़ा ओ जंगल विच बन हेठा बैठा है गुरु नानक कूक रहे गुरु नानक सच्चे पातशाह आए बन हेठा की वेख्या राय जी कदे इस पासे मुंह करके बैंद है कदे इस पासे मुंह करके बैठ सोचद खबरे इथो ना आ जाऊ फिर सोचद खबरे दूजे पास्यो ना आ जाऊ मेरी पिठ ना हो जाऊ ताई आ सोच रिया ते पिछे आवाज आई राय जी असी आ गए दी आवाज सुनी राय ने परत के वेख्या सामने गुरु नानक खड़ोता चरना ते डिग पिया आज सारे दी पुकार गुरु नानक ने सुनी ते सारे हुण एक मन होके जप रहे हन की कह

औरंगजेब दा हाथ फड़ लिया कि ए तिलक मैं खूंजन नहीं देंगा, मैं जुल्म नहीं होन देंगा, किसे दा धर्म खोण दा किसे नु कोई हक नहीं। ते ओ हाथ नु रोकण वास्ते भावे अपना सीस अपना सिर कटवाना पिया दिल्ली दे चांदनी चौक विच, सिर तां कटवा दिता पर उस दा हाथ फड़िया सी जेड़ा, ओ मुड़ के किसे भी हिंदू दे मत्थे तो तिलक ना पूंज सके। ताई फिर दसवें पातशाह ने अपनी बाणी विच भी आख्या सी ना,

पवित्र खून ओ पवित्र केसर मथे ते लगा दिता जिसनू कोई मुड़के पूंज नहीं सकया। एक कुर्बानी है।

मस्तं भगनंत शैलं मस्तं भगनंत शैलं कर्दमंत्रंत पपीलते साग्रं लघंत पिंगं साग्रं लघंत पिंगं तं प्रकाश अंध कह साध संगेण शिवरंग गोविंद साध संगेण शिवरंग।

भक्ति बढ़ली स्वरोही। नमो श्री भक्ति बढ़ली स्वरोही। ये शस्त्रां दी पूजा है। जिस वेले योधे रण विच जूझदे ने शस्त्र नू नमस्कार करके शस्त्र दी पूजा उचार देने, वो शब्दां दा वर्णन हो रहा है। तलवार दे सारे नां ने, भगौती बडैली सरोही, ये नाम हन तलवार दे। शस्त्र दी पूजा है। गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे नमो श्री भग

सुभतः सोही सुभतः सोही नमो लोहे की पत्रिका झलहे लहंती नमो दीप ज्वाला मुखी ज्यो बलंती नमो दीप ज्वाला मुखी ज्यो बलंती नमो पान की बान गंगा तरंगी नमो पान की बान गंगा तरंगी तेरे शाम है मोख दाती अपंगी फिर शाम है मोख दाती।

खंडो खड़ग, अस्त्रपान खंडो खड़ग, तुक तवर अर्ते अस्त्रपान खंडो खड़ग, तुमक तवर अर्ते सैप सरोही सैरी यही हमारे पीर, सैप सरोही सैरी यही हमारे तीर, तीर तू ही तू ही तवर तलवार, तीर तू ही सैथी तू ही तवर तलवार, नाम

संगीत भुजंग प्रयात छंद शस्त्रां दे नाम और शस्त्रां दी पूजा साहब जी संगीत छंद विच गा के दसदे है। कहंदे संगीत भुजंग प्रयात छंद तागड़ दंती।

0: भाई नंदलाल जी।
1: ताल बे मौला
0: हमेशा जिंदा अस्त,
1: हमेशा जिंदा अस्त। तालबे मौला हमेशा जिंदा अस्त।

त्रास मिटे, नाम लिए जम त्रास मिटे, तल ताल नसे हर सर नसे धैये, लोक परलोक सभी सुधरे। सेवा करन दा फल, सेवा दी महत्ता साहिब गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे, लोक परलोक सभी सुधरे, लोक परलोक सभी सुधरे, हर भगत प्राप्त होए।

0: चार ताल के अंदर यह जोड़ी का खास संबंध है। जिस तरह इधरों आवाज और तान लगाने पेंदे ने जोड़ी विच इस दे नाल तोड़े और तिहाइयां बजाउणियां पेंदियां ने और खास तौर पर जोड़ी के बोल का और ध्रुपद का संबंध है। तुसी सरवण कीता हुण गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे सेव करो करना निज की, तो साहब कहिंदे सेव करी इन्हीं की भावत, शस्त्र की सेवा और शस्त्र की पूजा। गुरु गोबिंद सिंह जी फरमा रहे
1: सेव करो करना निज की जैसे विचार पुलाल पिए, नाम लिए जम त्रास मिटे कल काल नसे हर शरण सिधरिए, लोक परलोक सभी सुधरे हर भगत प्राप्त होए तिहाइए, दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की, दास गोबिंद सिंह फतेह सतगुरु की, अस प्रभ छोड़ अवर
0: फतेह सतगुरु की। यह जो जंग विच फतेह हुई है यह किसी आदमी की नहीं, यह वाहगुरु की फतेह है। गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते कि खालसे की फतेह चार कूट विच होएगी, चढ़दे तो लहिंदे तक खालसे की फतेह होएगी और खालसे के झंडे झूलणगे। उन्होंने अपने शब्द श्रवण करने गुरु गोबिंद सिंह फरमा रहे
1: लंक लूट लिया लंक

0: देखो खालसे की फतेह चार सूट के अंदर
1: रूम नापत बजाओ शाम मोहरा चला सुनो नंदलाल एहसान प्रगट करूं मैं अपना राज
0: नंदलाल दे नाल गुरु साहब के वचन हो रहे भाई नंदलाल साहब ने
1: सुनो नंदलाल एहसान प्रगट करूं मैं अपना राज
2: चार वर्ण
1: एक वर्ण कराऊं
0: वाहेगुरु सिंह को नाम जपाऊं चार वर्ण एक वर्ण करा वाहेगुरु सिंह को नाम जपाऊं
2: चढ़े तुरंग उड़ावे बाज
0: चढ़े तुरंग उड़ावे बाज
1: देख खालसे को तुर्ग

छाए छुट्टड़ होई मक्खन लया विरोल कै छाए छुट्टड़ होई पीड़ लई रस गन्नेओ छिलछू है न कोई रंग मजीठो निकले अड लहे न सोई वास लई फुलवाड़ियों फिर मिले न टोई काया हंस विछुन्या तिसको न सथोई

तय हलत मन सुगावे। ठंडा तत्ता कोयला काला करके हथ जलावे। ज्यों चक चूंदर सप दी अन्ना कोड़ी कर दिखलावे। जान रसौली देह विच वटी पीड़ रखी शर्मावे। वंश कपूत कुलछणा छड़िया बने न विच समावे।

जैसे घाव घायल कै जतन कै निको हो, पीर मिट जाए लीक मिटत न पेखी है। जैसे घाव घायल कै जतन कै निको हो, पीर मिट जाए लीक मिटत न पेखी है। जैसे फाटो अंबर सियाए पुन ओडियत नांगो तो न होए तो थेगरी परेखी। जैसे फूटो बासन सवार देत है ठठेरो, गिरत न पानी पे गठीलो पेख पेखी है। तैसे गुरशरण विमुख

वंश घात अपराध करारे मद पी जुए खेल दे जोहन पर नारे मोहन पराए लक्ष्मी ठग चोर चगारे विश्वास ध्रोई आकृत घन पापी हत्यारे।

मन हठ न घटे। चोला चंदन पर हरे खरखे पलटे, क्यों निंदक पर निंदो हठ मूल न हटे। अपन हथी आपनी जड़ आप उपटे, अपन हथी।

सिर छार उड़ावे। तुम्हें अमृत सिंजिए कुड़त न जावे, सिमल रुख सरेविए फल हाथ न आवे। निंदक नाम भी होने सत्संग ना पाए, मूर्ख सच न जाननी।

परमेश्वर आप हुआ रखवाला, परमेश्वर आप हुआ रखवाला। शांत सहज सुख खिन में उपजे।

ई पावन पवित्र शब्द। साहिब श्री गुरु नानक पातशाह दे मुखारबिंद तो उच्चारण कीता है, जिस शब्द अंदर जीव प्राणी मात्र नूं सतगुरु जी उपदेश देंदे ने और ए गल समझा रहे ने, हे प्राणा वाले प्राणी मनुख, एक नाम नूं त्या, एक नाम नूं याद कर, क्योंकि ए नाम ही तेरे नाल जाना है। सो साध संगत, धन गुरु नानक पातशाह दी इस पावन पवित्र शब्द अंदर सानू कलजुगी जीवां नूं प्रेरणा देनी बड़ा सुंदर ख्याल करके आओ आपां इस शब्द नूं मन विच वसाईए, हिरदे विच इस तरह धारण करिए जिवें सतगुरु समझा रहे ने।

सतगुरु ने एक नाम की प्रेरणा दी, एक नाम बारे ही समझाया है। आओ सतगुरु गुरु नानक पातशाह का जड़ा पछोकड़ तकी है। साहब श्री गुरु नानक पातशाह उस बार दे इलाके दे रहण वाले ने, जिस बार दे इलाके विच एक बड़ा सुंदर ग्राम, बड़ा सुंदर नगर है, जिसका नाम है तलवंडी। इस तलवंडी दे विच रहण वाले शिवराम बेदी जी होए ने, उन्हां दे दो पुत्र मेहता कालू जी ते उन्हां दे छोटे भाई लालू जी। कहिंदे ने मेहता कालू जी दे ग्रह ते माता तृप्ता दी कुखो शीश नौ ते प्यार नाल आखो धन गुरु नानक। गुरु नानक साहिब ने आगमन लिया। जिस वेले आगमन होया ते मेहता कालू जी पंडित हरदयाल दे घर गए, जाके खबर दिती कि मेहता कालू जी दे घर सत संगत पुत्र दी दात होई है। हुण इन्हां दे ग्रह विखे केवल एक पुत्री सी जिदा नाम इतिहास विच नानकी आया है। हुण जिस वेले जाके मेहता कालू जी पंडित हरदयाल नूं दसदे ने कि तुसी मेरे घर आओ ते मेरे घर आके मेरे पुत्र दा नाम रखो, ते कहिंदे ने दिन चढ़िया, पंडित हरदयाल जी

अज मनुख ने कीता की है, खाना पीना हसना सौना, बस इस गल्लां वल साडा ध्यान है। खाना की चाहिदा है, पीना की चाहिदा है, हसना खेडना ते सौना असां सिख लिया है, पर भुला की दिता है, विसर गया है मरना। सच नूं असां विसार दिता है, क्योंकि मरना सच ते जीना झूठ। ये ओही गुरमुख जन कह सकदा है जिसने गुरु नानक दी बात नूं बुझ लिया है, जिन्हें गुरु नानक पातशाह दी गल नूं जान लिया है। हुण साडे विच तुसीं देख लो, इस तों सिवा होर कोई गल है? अज भी मैं कई जगह ऐसा देखदा, जब कोई भी जीव प्राणी मात्र मिलता है, वह सवाल यही करता है, भाई साहब दसो खाना की चाहिए ते पीना की चाहिए, की खाना चाहिए की पीना चाहिए, इसकी विधि कोई प्रकार सानू दसो। ते साध संगत आपां इन्हां सवालों नूं छड्ड के होर भी सवाल कर सकते हैं। सवाल करन वाले केड़े ने कि अमृत वेले किन्ने बजे उठना है, बाणिया का पाठ किवें करना है, सिमरन किवें करना है, बंदगी किवें करनी है, भगती किवें करनी है, प्रभु वाल मन किवें लाउणा है। सवाल करन वाले ते इह ने, पर आपां संबंध केवल खाण तक रखिया। हुण रात नूं खाणा खाण बहीए ते सवेर दा ख्याल पहले आ जांदा कि सवेरे की खाणा है, ओ भोलिया इहनूं ते खा लै, इनू खा के मालक का धनवाद कर, सवेरे फिर वेखी जाएगी। तो सवेर का जे खादा नहीं हुंदा, शामा का पहले फिक्र पै जाता है। अगर जे कोई फिक्र करना है, कोई विचार करनी तो यह करनी है कि रात बीती है, मालक तेरे सिमरन विच अमृत वेले अपने सिमरन की दात बख्शी। अमृत वेले उठ जाइए ते अरदास करिया करिए, मालक जे अमृत वेले का जागना बख्शिया है तो नितनेम भी बख्शी, सिमरन भी बख्श, बंदगी भी बख्श, भगती भी बख्श, क्योंकि इस तो सिवा मनुख का जीवन नहीं है। क्योंकि आपां खाना जरूर है, पर जीवन वास्ते, खाण वास्ते नहीं जीवना। कई मेरे वर्गे ऐसे है ने जेड़े जीवंदे ते हन पर खाण वास्ते नहीं। भाई केवल जीवन वास्ते खाना है कि जेड़ी जिंदगी चल सके, जिदे नाल सिमरन हो सके। एवें थोड़ी महापुरखां ने आखे कि भाई अगर कोई जिंदगी विच चीज नूं वधाउणा है ते भजन नूं वधाओ। असी भोजन वधा लिया है, भजन घटा दिता है। मैं महापुरख का ख्याल पढ़ रहा सा, बड़ा सुंदर है, मैं तुहाडी पेट करा। महापुरख कहिंदे ने कि भोजन नूं घटाओ, भजन नूं वधाओ, क्योंकि जदों बहुता भोजन करांगे उह साडे अंदर शक्ति ताकत पैदा करेगा। बहुता भोजन खावांगे साडे अंदर ताकत पैदा करेगा, ते जदों बहुत ही अंदर शक्ति ताकत आ जाए ते ताकत तुहानू पता है खून दी शक्ति पैदा करती है, खून दी भावना पैदा करती है, बहुत ही शक्ति, बहुत ही ताकत, बहुत ही विल पावर, वो खून दी भावना पैदा करती। महापुरख कहिंदे ने इसे लई खाना घट खाओ, भजन ज्यादा करो, क्योंकि बहुता भोजन खावांगे ताकत पैदा करेगा, खून दी भावना पैदा करेगी, बहुता भजन करांगे ते मन अंदर दया पैदा होवेगी। बहुता भजन करांगे मन अंदर दया पैदा होवेगी, ते जो दया मन अंदर पैदा होवेगी फिर मन करेगा जे मेरे कुल कुछ है ते मैं किसे नूं देवां, मैं किसे नूं कुछ वंडा। गुरु नानक पातशाह का यही इतिहास है ना। गुरु नानक पातशाह ने भजन किया केवल इसलिए मन अंदर दया पैदा हुई है कि मेरे कुल जो कुछ भी है मैं देवां, मैं वंडा, अपने कुल कुछ ना रखा, अपने पास कुछ नहीं रखना। धन गुरु नानक पातशाह एक मरतबा दरवाजे ते फकीर आ गया। उस फकीर ने आके दरवाजा खटखटाया ते आख्या मैनू कुछ दियो। जिस वेले देने दी मंग कीती ते साध संगत गुरु नानक पातशाह अंदर पलंग ते आराम कर रहे सन, कन्नी आवाज पै गई। जिस वेले कन्नी आवाज पई, धन गुरु नानक पातशाह उठे ते साध संगत आटे दे बर्तन नूं हथ पाया, उस आटे दे बर्तन नूं हथ पाया ते जाके सारा ही बर्तन लुद दिता। जिस वेले बर्तन लुद दिया, माता तृप्ता ने तकिया ते माता तृप्ता
جس ویلے پاس آئی فقیر لے کے جا چکا سی. سدگرو واپس آ گئے. جس ویلے واپس آئے تے آخیا نانک کی دتا ہی؟ کہن لگے ماں جی مینوں کی پتا جو پیا سی میں چک کے دتا. کہن لگے بولیا پترا میرے گہنے وہ پے ہوئے سن تے تو سارا ہی بدل لٹ دتا ہے سارا ہی بدل ادو دتا ہے. کہن لگے ماتا جی میرے کول تے جو ہے سی میں اس نو دے دتا میرا تے من کردا ہے نانک تو آپا بھی وار دے اپنا آپ بھی قربان کر دے. کس لئی؟ کیونکہ من اندر بھجن ہے. جدو بھجن منک دے اندر آ جائے بھجن یہ طاقت پیدا کر دینا ہے یہ پاونی پیدا کر دینا ہے کہ میرے کول جو ہے میں دیا. اس لیے ایسی دیا من اندر پیدا کرنی ہے کیونکہ بھجن کران گے تو یہ من اندر پیدا ہوئے گا. صاحب کہندے نے کھانا پینا ہسنا سونا بسر گیا ہے مرنا خسم وسار خواری کینی تگ جیون نہیں رہنا. او پائی اے جیون نہیں ہو رہنا اس جیون نے تیرا ساتھ نہیں ہو دینا انہیں ایتھے ہی رہ جانا ہے. اس لیے آتمک جیون نو اچا کر اس دے نال تیرا پربھو دے نال ملاپ ہوئے گا. سب کہہ رہے نے سارے مل کے آخو جی

मेरी चिंता मिट गई है और ना मेनू डर आउंदा है ते ना मेरे अंदर कोई चिंता आउंदी। इसलिए कि तू मेरा सारिया थावां ते राखी करना, सारिया थावां ते तू मेरा राखा है। जे तू मेरे नाल है ते मैनू डर किसदा, मैनू डर किसदा। जे तू मेरे नाल है तो मैनू अग की करूगी, जे तू मेरे नाल है तो मैनू कोई विपता संसार की सता नहीं सकती और मेरा कोई नुकसान और डरा धमका नहीं सकती मैनू, क्योंकि तू मेरा राखा है सारिया थावां ते। इसे लिए मालिक सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने फरमाया, हजूर ने बड़े माण विच बड़े जोर विच कहा कि एडा मेरा वाहिगुरु वड्डा है कि भावे मैं अग विच भावे मैं देग विच भावे तत्तियां रेतां सीस ते पईयां पर मैनू तत्ती वाह भी नहीं लगी। ये कौन कहेगा? खसम वाला, मालक वाला, गुरु वाला जिहड़ा है ही बेगुरा, वो कहेगा कि जिसनू कदी पिता दी गोद विच बैठन दा सुभाग समा ही नहीं प्राप्त होया, वो मान की कर सकदा किसे ते। जिसने कदी पिता कोलों अमृती नहीं पीता, वो कह सकदा है कि मेरा बापू मेरा पिता मेरे वास्ते आ करेगा? नहीं, नहीं कह सकेगा, उन्हूं अपनी कमजोरी दा पता है। लेकिन सतगुर सच्चा पातशाह बड़े तान नाल बड़े मान नाल हजूर फरमांदे ने, ताती वाओ न लग गई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे रामकार दुख लगे न पाई, सतगुर पूरा पेटिया जिन बणत बनाई। राम नाम औखद दिया एकै लिव लाई, राख लिए तिन रखनहार सा ब्याध मटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभ पए। उस मान विच आके तान विच आके असी कौन हां? सारे बच्चे सारा परिवार सतगुरु जी दा, बच्चे और बच्चियां परिवार मालिक सतगुरु, सतगुरु परिवार दा मालिक है साडा। तो असा ए तो कदी नहीं कहना कि असी सतगुरु दा परिवार हां, पर आपां पढ़ लईए जरूर, सारी संगत पढ़ियो। गुरु अर्जन देव अकाल पुरख की गोद विच ते सारी संगत गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे चरणा उते, फोटो ते इवें आएगी ना, पता ते इवें ही लगेगा ना, अकाल पुरख की गोद विच अकाल पुरख दे चरणा उते साहिब गुरु अर्जन देव सच्चा पातशाह और उन्हां दे चरणा उते आपां सारे। उस मान विच आके सतगुर सच्चे पातशाह हजूरी विच जिवें उन्हां ने माण कीता, आपां वी माण करिए ने सारे। तो बोलियो सारे, बीबियां उच्ची आवाज विच और बड़े कंट्रोल विच, गलबात छोटी छोटी साडे को नहीं आउणी चाहीदी, क्योंकि सत्संग है, सचखंड है, वैकुंठ है, इसी महिमा दा पारावार नहीं। जे असीं नहीं सोचांगे तो बेअदब होवांगे। सारे पढ़ियो।

मेरी सार करे हम हर के बालक। मुंह मंगा सोई देवदा हर पिता सुखदायक। अवगुण को न चितारदा

मांगो राम से एक दान, आई बेग फॉर वन गिफ्ट ओनली फ्रॉम द लॉर्ड। मे ऑल माई डिजायर्स बी फुलफिल्ड मेडिटेटिंग ऑन एंड रिमेम्बरिंग योर नेम ओ लॉर्ड। पॉज। मे योर फीट अबाइड विद इन माई हार्ट एंड मे आई फाइंड द सोसाइटी ऑफ द सेंट्स। मे माई माइंड not be afflicted by the fire of sorrow. May I sing your glorious praises 24 hours a day. May I serve the Lord in my childhood and youth and meditate on God in my middle and old age. O Nanak, one who is imbued with the love of the Lord is not reincarnated again to die.

साहेब गुरु अर्जुन पातशाह श्री सुखमणि साहेब अंदर कितना उपदेश सुंदर दे रहे। प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा कहते ने, जिहड़ा प्रभु का सिमरन है सारे नाल उच्चा है, पावन है, पवित्र है, श्रेष्ठ है। सिमरन उच्चा क्यों किया गया? कहते ने कि सिमरन उच्चा इस वास्ते है, ना तेरा निरंकार है न ले है, नरक ना जाई। नाम जपन वाला सिमरन करन वाला नरकां दे विच नहीं जांदा, सिमरन करन वाला। ते जिहड़ा सिमरन करदा है वो नरकां दा भागी नहीं बन सकता, इसलिए सिमरन सावे नाल उच्चा किया गया है।

गोविंद गोविंद संग नाम दोमलीना आठ दम को छिपरो होयो लखीना भूलना तन्ना त्याग के प्रीत चरण को बीरा नीच